फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक.
2: A dream waiting to be revived. Watch Dr. RMB Monday to Friday 7 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर. नीलम इज गोइंग शॉपिंग वेरी सून बाय द वे. डोंट फॉरगेट टू पुट दैट लाल परांदा ऑन योर शॉपिंग लिस्ट. ओके, आई डोंट केयर इफ यू हैड अ हेयर कट, गेट वन विद अ क्लिप ऑन थिंगी थिंग सो दैट यू कैन स्टिल वेयर अ परांदा. वेयर टू फाइंड इट? ट्राई वेम्बली और साउथ हॉल.

0: Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Are you? Join Karishma Kapoor in India's best dancer. This weekend, 9:30 p.m. only on Sony TV.
1: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs apply. Hey!

0: महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। My mom started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
1: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise and music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. You'll be sport for choice at Al Murad, Britain's largest independent ceramic tiles importer and retailer. Visit our stunning showrooms across London and take advantage of our huge range of tiles at great prices, including clearance pallets with up to 80% off. Also, bathrooms, showers, taps, a range of vanity units and modern accessories. Open to trade and public with trade discounts. Delivery service available. Al Murad, with branches throughout London. Visit al-murad.co.uk.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com.

जो मैं नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Weekdays with Shubham Sahi.
1: I don't put it past him, do you?
0: Weekends with Amit Channa.
2: The tension rises and the anticipation becomes unbearable.
0: This is Sunrise Radio.
3: आज दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।